वापस आ गए हैं स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न तुहाडी अपनी होस्ट तनु दे नाल सांझी करदे हां एक बहुत ही सोहनी कविता शिव कुमार बटालवी द्वारा लिखी गई अरजोई। वह की लिखते ने, तू जो सूरज चोरी कीता मेरा सी, तू जिस घर दे विच हनेरा कीता मेरा सी, ए जो धुप तेरे घर हसे मेरी है, इस दे बाजो मेरी उम्र हनेरी है, इस विच मेरे गम दी महक बथेरी है, ए धुप कल सी मेरी अज भी मेरी है, मैं ही किरण विहोणा इसदा बाबल हाँ, इस दे अंगी मेरी अगन समोई है, इस विच मेरे सूरज दी खुशबोई है, शिखर दुपहरे जिस दी चोरी हुई है, पर इस चोरी विच तेरा कुछ भी दोष नहीं, सूरज दी हर युग विच चोरी होई है, रोंदी रोंदी सूरज नू हर युग अंदर, कोई ना कोई सदा दुपहरी मोई है, मैं निरा लोआ रिशम विशुन्ना अर्ज करां, मैं एक बाप अतर्मी तेरे द्वार खड़ा, आ हत्थी ए सूरज तेरे सीस तरां, आ अज अपनी धुपली तेरे पैर फड़ा, मैं कलखाई दे तू मैनू बख्श दवी, धुप्पां सावे मुड़ना मेरा नाम लवी, जे कोई किरण कदे कुछ पुछे चुप रवी, जा मैनू काला सूरज कह के टाल दवी। ए एक धुप दे बाबल दी अरजोई है, मेरी धुप मेरे लिए अज तो मोई है, सने सूरज तेरी अज तो होई है, धुप जिदे कर हसे बाबल सोई है, तू जो सूरज चोरी कीता तेरा सी, मेरे घर तां जन्म दिवस तों नेरा सी, मेरे घर तां जन्म दिवस तों नेरा सी।

वापस आ गया स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न शामा जी एंड तानू दे नाल सांझियां करदे हां कुछ मेलबर्न दीयां खबरां तुहाडे नाल। मेलबर्न दीयां अज दीयां ताज़ा खबरां विच ब्रेब्रुक इलाके विच एक वड्डे एरसन अटैक दी जांच जारी है जिथे गड्डियां ते घर नूं अग लग गई। इस दे नाल ही मेलबर्न दे रेस्टोरेंट्स अते नाइट लाइफ वेन्यूज़ उत्ते हो रहे अटैक्स नूं लैके भी पुलिस अपने वल्लों काफ़ी अलर्ट आ। चंगी खबर यह है कि मेलबर्न विच इस हफ्ते ऑस्ट्रेलियन डांस बियानल शुरू हो रहा है जिस नाल सिटी विच कल्चरल सैलीब्रेशनस दा माहौल बनया रहेगा। अते ट्रांसपोर्ट अपडेट्स विच मैट्रो टनल अते नवे ट्रैम प्रोजेक्ट्स नाल लोकां नूं होर भी सुविधा मिल रही है। तो यह सन अज दीयां कुछ खबरां जो असीं तुहाडे नाल सांझियां कीतियां। सुनदे हां एक गीत ते वापस आउंदे हां फिर स्टूडियो दे विच ते डिस्कस करांगे कोई अज दा टॉपिक जिस बारे तुसी भी सानू अपने विचार दे सकते हो। सुनदे हां गीत ते वापस आउंदे हां स्टूडियो दे विच।

0: यूथ जस्टिस वर्कर दे तौर ते तुसी हिरासत विचले नौजवानां दी सहायता करोगे। ए एक सुरक्षित नौकरी है जिस विच तनखा समेत ट्रेनिंग अते तरक्की दे मौके शामिल हन। जे तुसी एक सहायक टीम नाल सफल अते संतुष्टि भरे पेशे दी भाल कर रहे हो तो यूथ जस्टिस करियर्स लिख के भेजो। Authorized by Victorian Government, Melbourne.
1: Win FM would like to thank the Community Broadcasting Foundation for their continued support by providing funding that helps this station remain on air. With local content, language programming and various music styles, the CBF assists Win FM to maintain technical quality.